0: এ ভাবো যাতে উঠাটা সেটা উঠা না আপনি বেহে বিষে যস্তো ছ বুহারীকো লাগি গহনা কিন জানু পরি না উঠো তো ছিটো
1: হো তো এ আমা বল কা জানি ভন্নু তো
0: পহিলা মুখ ধুনে অনে এই আমরে বেশি শহরকো ভিনসুর স্থান চোকমা ছ নি জলছে সুনসাদী পসল জানে सुनसादी र हिराका भने जस्तै गहना पाइने ठाउँ भनेकै जयलक्ष्मी सुनसादी पसल हो त
1: 2045 सालदेखि निरन्तर तपाईँकै सेवामा समर्पित जयलक्ष्मी सुनसादी पसलमा तयारीका सबै खाले गरगहना अर्डर अनुसार आधुनिक डिजाइनमा सुनसादी र हिराका गरगहना बनाउनुका साथै कम्प्युटर तौलद्वारा नाप जाँच गरी ग्यारेन्टीका साथ खरिद बिक्री गरिन्छ जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसल बेसी शहर नगरपालिका 8 भीमसेनी स्थान लमजुङ प्रोपाइटर बम बहादुर विश्वकर्म र सूरज विश्वकर्म सम्पर्क फोन नम्बर 066-520-209 र मोबाइल नम्बर 9840-58-565 राज्य अनुसारका पत्थरका लागि जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसललाई नै सम्झनुहोस्
2: HIV सम्बन्धी